रोड पे रूल सारे तोड़ के घूमू सारी रात सनरूफ खोल के, स्पीकर में बजती रहती बीट एक सेक्सी, हेरिया के मारू चक्कर जैसे पीसीआर की जिप्सी।

0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
3: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
2: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
3: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: メロディーメン。
1: Bollywood music e wahaka dakka laeru music director unge wahaka dakka anula nimma lage nuwane hulonge film to ga music supervisor unga da kura daura bure Bollywood ge music director ege zimma mafula sabake film ge muli musical identity button kuruma raagu tang heduma music arrangement ta tayyar kuruma limverina lavakiun terina ko masike kurum ge turun film ge wahake ya vyafari ge strategy ya ए म्यूजिक कुलवाय दिनों का विस मैं करने तो औरेंग अदा करनी म्यूजिक डायरेक्टर कम कवाती। जमाने बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टरों के